हमारे साथ बनी रही है आप सुन रहे हैं BRC2 FM 94.6 watu nadi ce muku kuna tare da BRC2 FM kan mita 94.6 ba kuma Karina Kafar bace ko Kajal Khadija Farda ce daga nan BRC2 FM to masu rokar fa ku sha'afa da jin waƙoƙin India BRC2 ce ta ku tashar al'umma.

हमारे स्टेशन के सच बने रहिए। योदिना दागिदा इंडियन चिंग अच्छा कब सारा रंबियार सीट से फ़ाम कमिटा चेस्ट इंडा हो उड़ा उगोशिदा You are listening to BRC to FM 94.6. The time is 4 p.m. and it's time for the station for network news. Anytime from now, we will relay on the FRCN for the network news. Stay tuned.